Sansa nome adiyan adiyapana parashikshan internship tata sanyog da no sandhan karakrame sakriya robse bahag le raha hai ise prakar videshi vishadalay unke chatar aur vishesh ke abhi hai hamare vishadalay mein akara shikshan ge van vegane gativedion mein bahag lete hai jisse se anubhavon ka dan pradhan aur antarsha sahyog ko aur adhik mazbooti milti hai shikshan ne gativishilta ke vistar se shiksha ke gunavta mein सुधार वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान तथा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है भविष्य में भी विश्वविद्यालय इस दिशा में अन्य सहयोग का दायरा और अधिक बढ़ाने तथा वेश के प्रतिष्ठित हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा ये भी बताया गया कि इन सहयोग समझौते के अंतर्गत संयुक्त परियोजनाएं तैयार की गई है जिसमें शिक्षकों का कौशल विकास छात्रों एवं शिक्षकों का अकादमिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है इन पालों से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के उच्च योग्य विशेषज्ञों की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा न्यूज़ वॉश रेडियो ओजे तुजेक

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है, पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्यावस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

राशि पोशाक जो राष्ट्र के संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये हमारे पूर्वजों का अवशेष है जिसने सदियों से अपना आकर्षण और सौंदर्य नहीं खोया है। ये प्रसन्नता की बात है कि हाल के वर्षों में देश के नेतृत्व ने लोक शिल्पों के पुनरुद्धार, राष्ट्रीय वेशभूषा का प्रचार प्रसार, लोगों के बीच उनके विकास और उन्नति तथा इस प्रकार महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया है। सूत्रों से स्पष्ट है कि एक औद्योगिक, शहरी और रचनात्मक राष्ट्र के रूप में तजकों ने मानव सभ्यता की महान विरासत के निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तजिक लोग रेशम और रेशमी कपड़ों के खोजकर्ता और आविष्कारक के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिनमें विश्व प्रसिद्ध अतलास भी शामिल है। प्राचीन काल से ही अतलास और अदरास कपड़ों का बहुत महत्व दिया जाता रहा है और राजा तथा धनी लोग अपने संरक्षकों और सेनापतियों को सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में इन कपड़ों से बने विस्तृत रूप से बुने हुए वस्त्र विहीन करते थे। प्राचीन राजा अदरास के कपड़े में युद्ध कर देते थे और योद्धाओं को उनके मासिक वेतन के बदले अदरास के पोशाक देते हैं। भूगोल वेताओं के अनुसार नवीन दसवीं शताब्दी से समरकंद, बुखारा, हुजान और फरगाने कपास और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। हुजान को निबादाम, इसफरा और इस तरह के शाही अतलास, एदरास, बेकसाब, खरबूज, आलोचा और चीथी के दुनिया भर में कई खरीदार थे। एक किनवा दंती है कि हुजान के अतलास और एदरास बुनकारों ने मार्गिला के कारीगरों को जो 18वीं-19वीं शताब्दियों तक फरगाने के ताजिकों का शेर था, समृद्धि कढ़ाई वाले अदरास कपड़े बुनने की शैली और तकनीक सिखाई थी। 20वीं सदी के शुरुआत में यहाँ 6 से अधिक प्रकार के रोशम, अर्ध रेशमी, सूती और तिब्बती कपड़े उत्पादित किए जाते थे, जिनके मध्य एशिया, ईरान, भारत, चीन, रूस, तुर्की और काकेश के बाजारों में कई खरीदार थे। राशि पोशाक राष्ट्र का प्रतीक है। महिलाओं को इसे बड़े गर्व के साथ पहनना चाहिए। अतलस के कपड़े पहने ताजिक लड़कियों वसंत के फूलों की तरह ताजा और नाम दिखाती है। अतलस रंग वसंत के धनुष और बहन के याद दिलाते हैं, जो शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ताजिक एक संप्रभु लोग है जिनका अपना स्वतंत्र गणराज्य, भाषा, रीति रिवाज और रहना। हमें इन बहुमूल्य विरासतों को अपनी आंखों के तारे की तरह संरक्षित करना चाहिए तथा उन्हें भावी पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। वास्तव में अतलास या इदरास कोट पहनना एक मौसमी परिधान नहीं होना चाहिए और इसे पूर्व संध्या पर और छुट्टियों और समारोहों के दौरान नहीं पहना जाना चाहिए और इसके अलावा अधिकारियों के कहने पर ये हर ताजिक महिला के रोजमर्रा के पोशाक होनी चाहिए। अतलास और अदरास से बनी पोशाक निसंदेह एक नेता और व्यवसायी के पत्नी, एक वैज्ञानिक और शिक्षक और एक छात्र और स्कूली छात्रा के लिए सुंदर है। ताजिक राष्ट्रीय पोशाक ताजिक लड़कियों की सुंदरता में एक और निखार लाती है। इतिहास इस बात पर का साक्षी है कि ताजिक महिलाओं और माताओं को हमेशा से लोगों और राष्ट्र की पवित्र रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण माना जाता रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य और विशेष प्रतीकों में से ये उनकी राष्ट्रीय पोशाक है। हमारे देश में ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन है जो सुख के अतलास और अदरास के जादू और आकर्षण, खतलों की पोष कढ़ाई और जहलार राष्ट्र क्षेत्र के अनूठी कढ़ाई, हिसार गति के शाही कढ़ाई, बदख्शां के कुर्ते, तख्ती और जुरोबों के चमकीले रंगों से मोहित न हो। हमारे राष्ट्रीय पोशाक दुनिया के सामने ठीक इसी रंग और चमक के साथ प्रस्तुत की जाती है। रज्जा और राष्ट्र के
अंगों में से एक राष्ट्रीय पोशाक है। वास्तव में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना आम बात है और पहली नज़र में ये निर्धारित करना आसान है कि वे किस राष्ट्रीयता से संबंधित है, विशेषकर ताजिक महिलाएं। पोशाक ये परिभाषित करता है कि व्यक्ति कौन है और उसका चरित्र और व्यवहार कैसा है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी ताजिक के राष्ट्रीय पोशाक अतलास अदरास के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

मित्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। एक मित्र को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि मित्र वो व्यक्ति होता है जिससे हम अपनी सुख दुख ही हर बात साझा करते हैं। विश्व में ऐसे कई किस्से, कहानियाँ और वास्तविक घटनाएं मौजूद हैं जिनमें मित्रता के रिश्ते पर लोगों ने अपना सर्वास्त्र न्योछावर कर दिया। अब हमारे प्रसारण से दोस्ती के बारे में कई शायरी सुनिए।

प्यारे सुनने वालों, ये थी कई शायरी दोस्ती के बारे में हमारे प्रसारण से। हमारा प्रोग्राम जारी है, सुनते रहिए रेडियो आवाज़ ताजिक।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

Rashtriya Sangrahalaya Dunyaga Suvidha 1331 Pramukh Vigyanik aur Sanskritik Sansthan hai. Yah hazaron durlabh aitihasik aur Sanskritik vastuye surakshit rakhi gayi hai. Jo prachin kal se lekar aadhunik yug tak Tajik rashtra ke itihas aur sabhyata ko darshati hai. Sangrahalaya keval aitihasik vastuon ke sanrakshan tak simit nahi hai. Yah pratativak anusandhan vigyanik adhyayan ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य भी निरंतर किया जाता है। संग्रहालय के विशेष आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित रखने और आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय संग्रहालय एक सक्रिय सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ नियमित रूप से विन्यासगत प्रदर्शनियाँ वैज्ञानिक सम्मेलन संगोष्ठियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम शैक्षिक व्याख्यान और विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में इतिहास सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है।

0: तजिकिस्तान के ऊपर शांति का सूरज चमके सूरज चमके शांति आज शांति कल शांति हमेशा शांति हमेशा शांति
1: प्यारे सुनने वालों आप सुन रहे रेडियो आवाज ताजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में आज हमने तय किया कि आपको ताजिक राष्ट्रीय पोशाक अतलास एदरास के बारे में प्रस्ताव करेंगे। हमारे साथ रहे

मित्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। एक मित्र को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि मित्र वो व्यक्ति होता है जिससे हम अपने सुख दुख ही हर बात साझा करते हैं। विश्व में ऐसे कई किस्से, कहानियाँ और वास्तविक घटनाएं मौजूद हैं जिनमें मित्रता के रिश्ते पर लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आप हमारे प्रसारण से दोस्ती के बारे में कई शायरी सुनिए।

प्यारे सुनने वालों, ये थी कई शायरी दोस्ती के बारे में हमारे प्रसारण से। हमारा प्रोग्राम जारी है, सुनते रहिए रेडियो आवाज़ ताजिक।